0: जाने दो मुझे, क्यों बचाया?
1: अरे तुम पागल हो गई हो?
0: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
1: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी सॉरी, अब ये ट्रेन तो मिस हो गई, अगली ट्रेन 6 घंटे में, यहाँ वेट कर सकती हो, पर अगर तुम चाहो तो अपने साथ कुछ पल बिता सकती हो।
2: तुम्हें इसी पॉइंट पे आके छोड़ूंगा मैं, प्रॉमिस, पक्का।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा।